अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करता।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

जाना रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेयर इन्फॉर्मेटिव उजाला बिंदनाओ, उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए ऑनलाइन, उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो दे अबे प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर। जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए, उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।

अर्श देवता पर तेरे नाम का डंका बजाऊं, तेरे आते ही जहां में कुफ्र का झगड़ा हटा,

एक बार नारद मुनि के कहने पर माँ पार्वती त्रिपुरारी भोलेनाथ जी से अमरनाथ की कथा सुनने की जिद करती हैं और कैलाशपति पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा में ले जाते हैं और कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ जाती है। भोले बाबा अमर कथा सुनाते रहते हैं और एक तोता उस अमर कथा को सुनता रहता है और बीच में हुंकारे भरता रहता है। भोले बाबा देखते हैं तो पार्वती माँ की आंख लगी हुई है, उन्हें गहरी नींद आई हुई है। भोलेनाथ सोचते हैं कि हुंकारे कौन भर रहा था। भगवान शिव ने एक तोते को उड़ते हुए तभी देखा, उन्हें समझते देर न लगी कि अमर कथा यही सुन रहा था। तो भोलेनाथ क्रोधित होकर तोते को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ देते हैं और तोता बेचारा अपने प्राण बचाने के लिए सूक्ष्मतम रूप बनाकर सत्यवती के गर्भ में चला जाता है। वही तोता सुखदेव मुनि कहलाए, जो आज भी अमर है। तो भक्तों सुनते हैं भोले बाबा का।

दिल कैसे नजरअंदाज कर दे उस एहसास को जो तुमने हमें दिया है। बेइंतहा खुशी देकर भी तुमने हमारा चैन

कोई छोटा मोटा चोर उचक्का लगता है सब। पैसे रिवॉल्वर सब छोड़ के भाग गया डर के मारे। कुछ चीज मिसिंग है साहब।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है, तू बता दे सबको इसे बताते हैं, ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो, और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

हमारे सभी सुनने वालों को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हो, मैं हूं सुभाष गोविंद। जहां तक की आवाज पहुंच रहे आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार हो, स्वागतम। हमेशा कहती रहा, जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह, आप रेको हार्दिक से बधाई, तहे दिल से मुबारकबाद अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप हर की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। आज के प्रोग्राम में कुछ गाने हम आपको जरूर से सुनाएंगे, कुछ नए कुछ पुरानी गाने लेकर हम अपने साथ आए हैं। तो जहां पर आप प्रोग्राम को सुनते होंगे आराम से बैठिए, या अभी तक आप लेटे हुए हैं तो लेटे रहिए। उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, तो चलिए प्रोग्राम में पहला गीत हम आप लोगों के लिए तैयार किया है और गाने वाले होंगे लता जी एंड किशोर कुमार।

0: ओ चंदा। और इसी तरह से गाना प्रोग्राम में आप लोग सुने दोस्तों, चलिए ये भी हो जाए।
1: क्या कहा?

और है लता। फिल्म का नाम रामपुर का लक्ष्मण, एंड स्टेशन है उजाला रेडियो। लता जी एंड मुकेश, पत्थर की सनम।

वेल महबूब मेरे, जो तू नहीं तो कोई नहीं। पत्थर की सनम लता जी एंड मुकेश की आवाज में गाना को प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने दोस्तों। और उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। आमस्टरडाम शहर से प्रोग्राम को बनाया जा रहा है आप सभी के लिए। उजाला रेडियो का दफ्तर का तार की नंबर है 020-409-0807। अगर आपको तार करना है तो दफ्तर के समय आप जरूर से तार करें।

वेल, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। और इसी तरह से गीत प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे। चलिए की बार जो गाना हम आपको सुनाने वाले हैं तो इस तरह से होंगे, लता जी और साथ देने वाला मोहम्मद रफी।

प्यारा बाजा ओ साथिया ओ बेलिया। फिल्म का नाम कारवां और स्टेशन जो आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का। हर एक रोज हर एक दिन

और हम लोग के दफ्तर खोलने की समय है देखा जाए तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 10 बजे सुबह से दिन में 3 बजे तक और हर एक शनिवार को 10 बजे सुबह से लेकर शाम में 5 बजे तक। Opening tijd in kantooruren. Van maandag tot en met vrijdag van 10 uur morgens tot 3 uur in de middag. En elke zaterdag van 10 uur morgens tot 5 uur in de middag. Harik Information aapko milega www.ujala.nl.

चलिए दोस्तों प्रोग्राम में तो अब की बार फिर से प्रोग्राम में हम ला रहे हैं लता एंड किशोर कुमार को। मैंने एक सपना।

आईने इसी तरह से गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, लता जी एंड किशोर कुमार, उजाला रेडियो। मैं हूं सुभाष, आप सभी को हम अपनी प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए जो गाना है इस बार हम तैयार किए हैं और आपको हम सुनाना चाहते हैं, तो चलिए हम दोनों प्यार से बैठ करके सुनते हैं।

प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी तुम न थे कभी हम न थे। उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं और जो गाने हम घुमा रहे हैं, ये आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भी पसंद आते होंगे।

ओए ओ बॉय, चोरी चोरी जो तुम, इसे हम प्यार कहेंगे, इसे हम जरूर से प्यार कहेंगे। लता जी एंड मुकेश की आवाज में गाना को प्रोग्राम में आप लोग सुने। अब की जो गाना हमने तैयार करके रखे हैं, फिल्म का नाम होंगे साजन और गाना का बोल होंगे जिए तो जिए कैसे बिन आपके। और चलिए तो गाना हम आपको जरूर से सुना देते हैं। मिसाल, जिए तो जिए कैसे बिन आपके,

0: मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

आप सभी को सुबह हंसी गोविंद का प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप हर एक को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबाद अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ है आप हर एक की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। कुछ मिले जुले संगीत से हम आप लोगों को आज खिदमत करेंगे। तो हमारे प्यारे सुनने वालों दोस्तों, दिल लेके आ गया तेरी गलियों में। अब की बार जो गाना आप लोग सुनेंगे प्रोग्राम में, तो खास करके देखा जाए प्रोग्राम में हम ला रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। उदित नारायण एंड पैमला जैन होना चाहिए। दिल लेके आ गया तेरी गलियों में।

क्या खूब गाना प्रोग्राम में आप लोग सुने। दिल लेके जान लेके तेरी गली में आ गया, उदित नारायण एंड पैमला जैन के आवाज में आप लोग सुने। फिल्म का नाम ना तुम जानो ना हम, उजाला का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। और अब की एक बहुत ही पुराना गीत हम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। गाने वाले होंगे मुकेश और साथ देने वाली होंगे शमशाद बेगम।

क्या गीत प्रोग्राम में अभी आप लोग सुनी, मैं भावरा तू है फूल, और गीत को गाने वाले करोड़ का ढेल चुनर वाला हार्ट मिलेश माइटी मुकेश एंड शमशाद बेगम, फिल्म का नाम मेला और संगीत से सजाए नौशाद, और इस गीत को तैयार किए शकील बाय द यूनियन स्टेशन उजाला रेडियो। दोस्तों चलिए अब की बार तो प्रोग्राम में ला रहा हूं आशा जी को, और साथ देने वाला है महेंद्र कपूर।

आप लोग सुने दिन है बहार के आशा जी एंड महेंद्र कपूर, फिल्म का नाम वक्त और संगीत से सजाए पंडित रवि। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं और अब की बार जो गाना आप लोगों के लिए हमने तैयार किए हैं, गाने वाले होंगे अलका याग्निक और साथ देने वाले होंगे उदित नारायण।

बहुत ही खूबसूरत गीत प्रोग्राम में आप लोग सुने, दिल ने पुकारा जानम आ गए हम, अलका याग्निक एंड उदित नारायण, फिल्म का नाम ले चल अपने संग, स्टेशन है उजाला रेडियो। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार जो गाना हमने तैयार किया है और गाना इस तरह से आप लोग के लिए हम पेश करेंगे, जाने चमन शोला बदन, मोहम्मद रफी एंड शारदा, फिल्म का नाम गुमनाम।

खूबसूरत गीत प्रोग्राम में आप लोग सुने शोला बदन और इसी तरह से मोहम्मद रफी एंड शारदा की आवाज में। अब की बार जो गाना हम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और गाने वाले होंगे आशा जी एंड कुमार शानू से, आप सुनिए चेहरा क्या देखते हो।

लोग सुने चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, आशा जी एंड कुमार शानू, फिल्म का नाम सलामी, संगीत से सजाए थे नदीम एंड शर्वन। एंड आप लोग को जाना रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, स्टूडियो का तार की नंबर है 020-363-0808 और दफ्तर का तार की नंबर है 020-409-0807, कांतोर के समय। चलिए दोस्तों, अब की बार जो गाना हमने तैयार किया है हसीनों का पुजारी किशोर कुमार।

दिलांश शायर हैं और इसी तरह से हसीन का पुजारी किशोर कुमार के वंश में गाना को प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे। अब की बार प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं मुकेश एंड शारदा।

खूबसूरत गीत प्रोग्राम में आप लोग सुने चले जाना जरा जरा जरा सारा थेड़ो। और इसी तरह से करोड़ का दिल चरण वाला हार्टफुलनेस माइट मुकेश एंड शारदा के अवंश में आप लोग गाना को सुन रहे थे। अब की बार जो गाना हमने प्रोग्राम में तैयार किए हैं गाने वाले होंगे देखा जाए तो हरिहरन एंड चित्रा के अवंश में सुनिए।

बहुत ही खूबसूरत गीत प्रोग्राम में आप लोग सुने। हम तुमसे न कुछ कह पाए, हरिहरन चित्रा के वंश में आप लोग सुने। फिल्म का नाम जिद्दी, स्टेशन है उजाला रेडियो। तो चलिए दोस्तों, अब की बार प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ मिलेश्वर माइटी मुकेश से सुनिए ये गीत।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार द्वारका बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 90 साल के आयु में नई खंतखियार औत लड़कन सुशीला विद्या सीता बिशुन बॉयक और आनंद द्वारका के मां रॉब लाब्रियर और सुनीता कालीचरण के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी आम्स्टरडम के फ्लीफो हाउस में विधवा राम कुमारी द्वारका सरजू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग जीवित में कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री जयदेव द्वारका जिन्हें लोग द कॉम के नाम से पहचानते थे और जो भी पहले हौसाखर द्वारका के मालिक था इनकर विधवा थी और पहले सूरीनाम हौतन के निवासी। नीदरलैंड और सूरीनाम से सभी लड़कन द्वारका और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 90 साल के आयु में नई खंतखियार औत लड़कन सुशीला विद्या सीता बिशुन बॉयक और आनंद द्वारका के मां रॉब लाब्रियर और सुनीता कालीचरण के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी आम्स्टरडम के फ्लीफो हाउस में विधवा राम कुमारी द्वारका सरजो की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल शनिचर के दिन में 2:30 बजे मोरखन जात्रदाह 2:30 किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

0: तेरा था।
1: और मृत्यु समाचार को प्रोग्राम में सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 90 साल की आयु में नीखंतख यार और स्वर्गीय पिता श्री कुंज बिहारी सरजू और स्वर्गीय माँ श्री राम प्यारी सरजू के बेटी भाइयों और बहनों सुलभा चांद नान मीन मीला इंदर और स्वर्गीय रुदी स्वर्गीय क्रीस और स्वर्गीय दत्त की बहन दो छोटकू की बड़की चार भौजी के ननद और सभी लड़कन के फूआ मौसी नानी और आजी अम्स्टर्डम के फ्लीफो हाउस में विधवा राम कुमारी द्वारका सरजू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे। स्वर्गीय श्री जयदेव द्वारका की विधवा थी। इन्हें लोग द कॉम के नाम से पहचानते थे और पहले हौत्साहराय द्वारका के मालिक जो था। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध को 90 साल की आयु में नीखंतख यार और स्वर्गीय पिता श्री कुंज बिहारी सरजू और स्वर्गीय माँ श्री राम प्यारी सरजू के बेटी सभी भाइयों और बहनों सुलभा चांद नान मीन मीला इंदर स्वर्गीय रुदी स्वर्गीय क्रिस और स्वर्गीय दत्त की बहन

Tolweg 275 Amsterdam Oostdorp में। निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग परिवार द्वारका और परिवार सरजू के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का वही प्रोग्राम कॉफी चाय मिदा शो आज कुछ देर में शुरू होने वाला है. फनफ 1 यू सेवन द वे मैथ कॉफी चाय मिदा शो मैथ आनंद चंद्रिका सिंह और हमारे साथ ये प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं नतुलक मैथ हेल फेल टोरीज हेल फेल बातें हेल फेल समाचार एंड हेल फेल लाख ऑफ देस फ्राइडे zonnige vrijdagmiddag van vrijdag 19 juni. Toen had je ik gewoon. Toen had je hier maar gezegd. Blijf luisteren. Abbe Hamaila.

उजाला रेडियो का वही प्रोग्राम कॉफी चाय मिदा शो आज कुछ देर में शुरू होने वाला है. फनफ ए न्यू सेवन द वे मैथ कॉफी चाय मिदा शो मैथ आनंद चंद्रिका सिंह और हमारे साथ ये प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं नतुलक मैथ हेल फेल टोरीज हेल फेल बातें हेल फेल समाचार एंड हेल फेल लाख ऑफ देस फ्राइडे zonnige vrijdagmiddag van vrijdag 19 juni. Toen had je ik hoe. Toen had je hier hamar hasad. Blijf luisteren. Abbe Hamaila.

ये है उजाला रेडियो, उजाला रेडियो का कॉफी चाय मिल्क शो यहीं से शुरू किया जाता है। हमने आपसे वादा किए थे दो तो हम इन बिखिर एंड या वैसे हम लोग बाटी इस गर्मी गर्मी मौसम में ऐसे प्यार भरे गीत ठंडी ठंडी आवाज में हम आपके घर तक पहुंचाते हैं, आपके मोटर कार में, आप चाहे जहां पर है वार योग बहन तू चाहे जहां बाटे तोर खाती नहीं गनो हम चलाएला। उजाला कॉफी चाय मिदक शो यहां से शुरू हो गया है। मैं सिद्धि आनंद वर्क शाइन ब्लाइफ रुस्तक कालम रहिए माँ की फोराल नहीं द्रुक एक बुन न द्रुक माँ करिए ब्लाइफ रुस्तक एंड ब्लाइफ फोराल ड्रिंक हेल फिल वाटर वाटर खनी पानी है ना कोला पिए ऑफ सूतक दिन नहीं खनी पानी इज मेर दैन फोल्डून

नीले गगन पे तले अभी आपने सुने उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। सुनने वालों मैं आपसे बता दूं, मैं वर्षाइनलिक हैब लिए दात अलमाल आल गहोर्ट, अगर ना सुनने बाटे, दान इस दित त बरिख, त लास्ट बरिख, आज के मौसम के हालात के बारे में, कोड ओरांजे इन लिम्बुर्ग वनवेगे फोर्से ओनवेर्स बुइन, दिस उ आवेगा, एन वार दित अलमाल एंडिग, हम ना जाने ला, मैं इन इल गफाल, आमस्टरडम में तो मोई वेर हेगा। मैं फॉर द मेंसेस इन लिम्बुर्ग, wees voorzichtig. Maar heb je shuru ho gehe ya shuru hone wala hai onweersbuien. Na 24 uur zijn de eerste scheurtjes in broos akkoord tussen VS en de Iran al zichtbaar. Want Israël nasune hega. Katani aibi hega. Dus ja, dat zorgt er wel voor dat ka hoiga, ka na hoiga, niemand weet

0: सुनावत रहे दिए सरोग भाई राग रिथम ऑर्केस्ट्रा ऑन लीडिंग फ्रॉम वीरेन किशुन दयाल अब की रहेगा मैं हेल टॉप म्यूजिकांत जबर जबर गायिका रहेगा मां सबसे मोई बात जाने कौन सी हैगा ये को नवा कॉन्सेप्ट है उजाला के और उसका नाम हम लोग रख ली बाती ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड
1: बॉलीवुड
0: एगर मतलब बस सबसे जबर जबर आवाज आज तलक जो रहा
1: किशोर रफी हेमंत कुमार तलत महमूद नोमपार आशा भोसले लता मंगेशकर हाँ तो
0: तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो जबर जबर म्यूजिकांत फ्रॉम द अफलोपा डेसेनिया आप सुनिए एगो शो में एगो बर का शो आलस टाइम में इन एन केयर और उमर रहेगा बाय फोर बेट लता मंगेशकर आशा भोसले मोहम्मद रफी किशोर कुमार मुकेश के गाना मर भी अरिजीत सिंह आतिफ असलाम कुमार शानू अलका याग्निक कविता कृष्णामूर्ति उदित नारायण अनुराधा पौडवाल साधना सरगम श्रेया घोषाल शान के अभिजीत अदनान सामी सोनू निगम हरिहरन पलक मुचाल मार ओक लोहित अबे ना दोन है मत अबे देर तक ना पहुंच ले बाते सी एच आत्मा मन ना दे हेमंत हेमंत कुमार के गाना तलत महमूद के गाना महेंद्र कपूर
1: गीता दत्त
0: शमशाद बेगम सुमन कल्याणपुर नूर जहान कितना दिए कितना लिए लो
1: हम एक बार बोला साइकिल तू ना सुनेगा
0: तू हम सुनी ला हम खोजी ला लाइसवा पे यार हम लाइसवा थोड़ा तो थोप जाने ला मदद से देर तक नाम सुने वालो फन आल दे इस देर तक ग्रोथ गवेल्ड नारे तू सुनिए एक स्टेज पे कैसे हम लोग करबे वह बदार एक्ट एन बिसोंदर कॉन्सेप्ट फॉर गमाक्ट कि हम लोग एक प्रोग्राम में सब डार देवे सब आवाज दस राइस कैसे बोले जाए अन टाइटलोस राइस ना ना पुराना अन ओदा अन टाइटलोस स्टेमन चाहिए बोले डाउन मेमोरी लेन दस ये रहेगा सनीचर के 19 सितंबर मेर फाट मेर फाट कौन सा नल पे तू किन सके
1: तू किन सके है कार्ट है इस तू स्नेह से किन ले अब यहीं से दान है हूँ फिर नहीं ओवर ना तो देंगे इट इस एन सैटरडे मॉर्निंग आवेंट om met je gezelschap, leuk gezelschap, om daar te zijn. Toen heb je akele bij jijse kids. Je zegt, ham akele, jij hebt hier, kabi, kabi. Dus dan kan je ook alleen komen.
0: Akele, hoe mee?
1: Sunil was op
0: trouwens, ik wil vragen meer liggen, Jan Peloit. Ook al vragen meer. Kijk, gai gaat op. Nou ja, dat kun je ook wel zeggen, toch?
1: Ja, natuurlijk.
0: Mousmi hebben, Mousmi Oberoi.
1: Ja.
0: Shekhar Kumar.
1: Ja.
0: Ayan Mukherjee.
1: Die is een nieuwe.
0: Boyke Datadin,
1: ja.
0: En Nizam Wagidou zijn.
1: Nizam, onze eigen Nizam Wagidou zijn.
0: Orkestra Rehiga, Raga Rhythm, National Indian Orchestra.
1: En we hebben Sunil Jitaru ook, jongens, of mensen thuis.
0: Alle topmuzikanten zijn erbij.
1: Muzikanten. En Usha Ganesh uit Nijmegen. Nijmegen, keer naam, hoor je die?
0: Kontje, collega, mevrouw uit Nijmegen.
1: Usha Ganesh, ham nan janit ki tukavle ujjala visur in Nijmegen mee. Maar bij de Hindustani reki naar reken in Nijmegen mee. Ik zal het niet weten, hoor.
0: Zeker, zeker.
1: Toen heb ik gel in Nijmegen. Ik ben nooit naar Nijmegen geweest.
0: Arre, jaar. NEC.
1: NEC. Oké.
0: Dat toch?
1: Oké, nou, Usha Ganesh zegt van nu, Sunil heeft op haar verjaardagsfeestje gespeeld. Prachtig, zegt ze. Usha, ook een hele goede middag. Welkom in onze show.
0: Aye deklie.
1: Aye Sunil, nee, die stemmer ke Usha zien we je ook in de meervaart.
0: Ik wil doek, ik wil bouw doek bericht.
1: Ab kon doek hega, kijk je doek hega?
0: Nee, maar dat is geen grap, dus hier moeten we niet lachen.
1: Nee.
0: Ik huil bij Nederland mee, in het noorden.
1: Ja.
0: Dus kon Groningen ke aspas mee.
1: Ja.
0: Ujaga ke naam he Meerstad.
1: Ja.
0: Matilda. Oro Johan.
1: Ha.
0: Duno 53 jaar ke bhalbicharan. Ego admi, ego aurat, ego echtpaar, Johan or Matilda. O sab ke ego tiener dochter haiga raha.
1: Ja.
0: Aur waarschijnlijk tiener dochter ke moori mein kuch garbadai gi op gegeven moment.
1: Ja.
0: 13 jaar ke kahun likhal ba. Kahun likhale 14 jaar ke.
1: Ja.
0: Dus abbe hum log na jaane la sunne walo ki 13 hai ki 14 hai chauriya.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk u sutle mein ओकर माय बाप सुतले में गल दोनों के हत्या कर देस
1: माधारिस मादान
0: दोनों को वुंसडे ऑफ डोंडरडे
1: या

दूरी ना होना चाहिए, दूरी ना होना चाहिए, यू मुनी फेयर से फनी मान वन तो दिनवा खराब हो जाएगा, तो दिलवा ना मानेगा, तू बेचैन रही है, तो को चाहेगा चैन मिले के, तो चाहे चैन मिल के, और कोई दूरी चल जाए, दूरी रहे तू उसे, असी मन फेयर फाइन इस वाई फाइन हाउ तो तू या तो तनी घबराहट में रही है, तू ना मोह से सूती है, तू दिन और रात ओके सोचिए।

live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो, उजाला रेडियो का कॉफी चाय मिनट शो यहीं से शुरू किया जाता है। हमने आपसे वादा किए थे दोस्तों तो हम इन शो बिगिनर एंड या वैसे हम लोग बाटी इस गर्मी गर्मी मौसम में ऐसे प्यार भरे गीत ठंडी ठंडी आवाज में हम आपके घर तक तो पहुंचाते हैं, आपके मोटर कार में, आप चाहे जहां पर है वार योग बहन तू चाहे जहां बाटे तोर खातिर ये गाना हम चलाएगा। उजाला कॉफी चाय मेरा शो यहां से शुरू हो गया है। मैं सिद्धि आनंद वर्क शाइन ब्लाइफ रुस्तक कालम रहिए, कालम रहिए, माँ की फोराल नी द्रुक एक बुन न द्रुक माक करिए, ब्लाइफ रुस्तक एम ब्लाइफ फोराल ड्रिंक हेल फिल वाटर वाटर खनी पानी है ना कोला पिए ऑफ सूतक दिंग नहीं खनी पानी इज मेर दैन फोल्डून।

नीले गगन पे तले, अभी आपने सुने उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। सुन वालों, मैं आपसे बता दूं, मैं वर्षाइनलिक हैब लिए दा तलमाल आल गहोर्ट, अगर ना सुनने बाटे, दान इस दित त ब्रिख, त लास्ट ब्रिख, आज के मौसम के हालात के बारे में, कोड़ ओरांजे इन लिम्बुर्ग वनवेगे फोर्से ओनवेर्सबुइन, दिस उ आवेगा, एन वार दित अलमाल एंदिग, हम ना जाने ला, मैं इन इल गफाल, आमस्टरडम में तो मोई वेर हेगा। मैं फॉर द मेंसे इन लिम्बुर्ग, wees voorzichtig. Waar heb je shuru hoge hai ya shuru hone wale hai onweersbuien. Na 24 uur zijn de eerste scheurtjes in broos akkoord tussen VS en de Iran al zichtbaar. Want Israël nasune hega. Katani aibi hega. Dus ja, dat zorgt er wel voor dat ka hoiga, kana hoiga, niemand weet het.

दूरी ना होना चाहिए, दूरी ना होना चाहिए, मुन्नी फेयर से फनी मान वन तो दिनवा खराब हो जाएगा, तो दिलवा ना मानेगा, तू बेचैन रही है, तो को चाहेगा चैन मिले के, तो चाहे चैन मिल के, मत कोई दूरी चल जाए, दूरी रहे तो उसे असी मन फेयर फाइन इस वाई फाइन हाउ तो तू या तो तनि घबराहट से में रही है, तू ना मोह से सूती है, तू दिन और रात ओके सोचिए,

0: उजाला रेडियो के साथ म्यूजिक नॉनस्टॉप फ्लो चलता रहे। हाँ, आप हमारे साथ दे रही है।
1: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार द्वारका बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 90 साल के आयु में नई खंतखियार औत लड़कन सुशीला विद्या सीता बिसुन बॉयक और आनंद द्वारका के मां रॉब लाब्रियर और सुनीता कालीचरण के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अम्स्टरडम के फ्लीफो हाउस में विधवा राम कुमारी द्वारका सरजू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग जीवित में कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री जयदेव द्वारका जिन्हें लोग द कॉम के नाम से पहचानते थे और जो भी पहले हौसाखरे द्वारका के मालिक था इनकर विधवा थी और पहले सूरीनाम हौतन के निवासी। नीदरलैंड और सूरीनाम से सभी लड़कन द्वारका और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 90 साल के आयु में नई खंतखियार औत लड़कन सुशीला विद्या सीता बिसुन बॉयक और आनंद द्वारका के मां रॉब लाब्रियर और सुनीता कालीचरण के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अम्स्टरडम के फ्लीफो हाउस में विधवा राम कुमारी द्वारका सरजू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल शनिचर के दिन में 2:30 बजे मोरखन जात्रदा हालफ द्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

0: मेरा था।
1: और मृत्यु समाचार को प्रोग्राम में सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 90 साल की आयु में नीखंतख यार और स्वर्गीय पिता श्री कुंज बिहारी सरजू और स्वर्गीय माँ श्री राम प्यारी सरजू के बेटी भाइयों और बहनों सुलभा चान नान मीन मीला इंदर और स्वर्गीय रुदि स्वर्गीय क्रीस और स्वर्गीय दत्त की बहन दो छोटकू की बड़की चार भौजी के ननद और सभी लड़कन के फूआ मौसी नानी और आजी अम्स्टर्डम के फ्लीफो हाउस में विधवा राम कुमारी द्वारका सरजू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे। स्वर्गीय श्री जयदेव द्वारका की विधवा थी। इन्हें लोग द कॉम के नाम से पहचानते थे और पहले हौत्साहराय द्वारका के मालिक जो था। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध को 90 साल की आयु में नीखंतक यार और स्वर्गीय पिता श्री कुंज बिहारी सरजू और स्वर्गीय माँ श्री राम प्यारी सरजू के बेटी सभी भाइयों और बहनों सुलभा चान नान मीन मीला इंदर स्वर्गीय रुदि स्वर्गीय क्रिस और स्वर्गीय दत्त की बहन दो छोटकू की बड़की चार भौजी के ननद सभी लड़कन के फूआ मौसी नानी और आजी अम्स्टर्डम के फ्लीफो हाउस में विधवा राम कुमारी द्वारका सरजू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल शनिचर के दिन में 2:30 बजे मोरखन जात्रदाह हलफ द्री किए जाएंगे। वेस्टगार्ड क्रीमेटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग परिवार द्वारका और परिवार सरजू के दुख में शामिल है।

ब्रिंग दे रोटी मान, ब्रिंग दे रोटी, निशाद सुल्तान की आवाज में फ्रॉम द वेस्ट इंडीज और उजाला रेडियो पर आज का प्रोग्राम में पेश की गई है।

होंगे गुलरी के फूल। इस गीत को तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन ये जानना चाहिए आपको कि इस गीत को गाई है 9 साल की बच्ची साक्षी सुखा, जिसका नाम है साक्षी सुखा साक्षी सुखा नई खन यार औत। आप सुने और टुडुख न्यू नाडो वेस्ट इंडीज।

और यूं ही रोने नहीं दूंगा, अगर तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। फिल्म एनिमल का गीत को आप सुने। उजाला रेडियो पर सुनने वालों, एक और गीत

उजाला रेडियो आपकी आवाज आपके गीत और संगीत आपका मन प्रिय रेडियो स्टेशन ये सब मिलाकर बनती है उजाला रेडियो।

0: मना कर।
1: हम यहीं पर आपसे इस प्रोग्राम के साथ जुदा होंगे, बहुत जल्दी फिर मिलने के लिए आप ही का मन प्रिय उजाला रेडियो पर।

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Assalamu alaikum, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो. उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे. और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए.

तू थाकी गयो फरी पर नहीं समझतो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

ये है उजाला रेडियो, उजाला रेडियो का कॉफी चाय मिनट शो यहीं से शुरू किया जाता है। हमने आपसे वादा किए थे दोस्तों हम इन शो से बिगिनर एंड या वसेंदर हम लोग बाटी इस गर्मी गर्मी मौसम में ऐसे प्यार भरे गीत ठंडी ठंडी आवाज में हम आपके घर तक पहुंचाते हैं, आपके मोटर कार में, आप चाहे जहां पर है वार योग बहन तू चाहे जहां बाटे तोर खातिर ये गाना हम चलाएला। उजाला कॉफी चाय मिदक शो यहां से शुरू हो गया है। मैं सिद्धि आनंद वर्क शाइन ब्लाइव रुस्तक कालम रहिए, कालम रहिए, माक फोराल नी द्रुक इक बुन न द्रुक माक करिए, ब्लाइव रुस्तक एन ब्लाइव फोराल ड्रिंक हेल फिल water, water. Kan niet pani, hè? Na cola pieën of zoetige dingen. Nee, kan niet pani. Is meer dan voldoende.

नीले गगन पे तले, अभी आपने सुने उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। सुनने वालों, मैं आपसे बता दूं, मैं वर्षाइनलिक हैब लिविता तलमालाल गहोर्ट, अगर ना सुनने बाटे दान इस दित त बरिख, लास्ट बरिख आज के मौसम के हालात के बारे में। कोड ओरांजे इन लिम्बुर्ग वनवेगे फोर्से ओनवेर्स बुइन, दिस उ आवेगा एन वार दित अलमाल एंडिग हम ना जाने ला, मैं इन इल गफाल आमस्टरडम में तो मोय वेर हेगा। मैं फॉर द मेंस इन लिम्बुर्ग, wees voorzichtig. Waar heb je shuru hoge hai ya shuru hone wala hai onweersbuien. Na 24 uur zijn de eerste scheurtjes in broos akkoord tussen VS en de Iran al zichtbaar. Want Israël nasune hega. Katani aibi hega. Dus ja, dat zorgt er wel voor dat ka hoiga, ka na hoiga, niemand weet het.

0: यार को ना लगवेल बैठे हम लोग
1: यहाँ तुम्हारे बाप बात है तो हमार बाप रही थे हम तो खाती मोहती करके लगवा देती
0: देखे तो आज फीस दे सब कोई के आज फीस दे एयर को लगवा के हमारे खाती नाले के लिए यहाँ पे एयर को मैं इतने खलूफ है
1: हम जाला तो बैठा हुआ उनके डायरेक्ट बैल करे डायरेक्ट हम जाल बैल करे फर ए वधु योली योमस योली योली ओव फादर वक्त ऑफ एयर को
0: बॉय और अब एयर को यहाँ एन चिवावा
1: एन चिवावा हेलो तू ही देखना है
0: दी चिवावा मुतर शेकर को में दी
1: मुतर चाय एन चिवावा
0: कॉफी चाय चिवावा दंक वेल आनंद
1: मौसरी है बाय बाय
0: बाय

अधूरी ना होना चाहिए, अधूरी ना होना चाहिए, यू मुनी फेयर है फनी मन वन, तो दिनवा खराब हो जाएगा, तो दिलवा ना मानेगा, तो बेचैन रहिए, तो को चाहेंगे चैन मिल के, तो चाहे चैन मिल के, मत कोई दूरी चल जाए, दूरी रहे तो उसे असी मन फेयर फाइन इस वाई फाइन हाउ, तो तू या तो तनी घबराहट में रहिए, तू ना मोह से सोचिए, तू दिन और रात ओके सोचिए,

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।